0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकरे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: यूअन लंग यू बिडू टेल आ लोका कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो
2: मिस्टर बेरी म्यूजिक कॉकटेल टॉपिंग रिकॉर्ड्स.